काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाय न हरिओ ताके ताप तनक मैं हरिओ रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पाछे ताय उबारा जिन नर नाम त्यारो का नारद दुष्ट दोख तेरा।

दुष्ट दोख थे ले हो बचाई सोया पाहे गए जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहमत एक न

0: सत्संग है जी। बोलो जी।
1: वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय थे वार्षिक भगवती पाठी दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय प्रियंकट कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जैठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कानून दयावता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्म स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पातदार दत्यांतर के खालसा से बोलो जी। वाह आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चार ही मुक्त हटियां चपियां चपियां जिन्हें नाम चपिया वन चक्या देख चलाई तेग वाह देख डेढ़ की दर्दना प्यार सत्यारे की कमाई दत्यांतर की बोलो जी। वाह जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म सीह दिते बंद बंद कटवाए कोपरिया लुआईया चरखड़िया से चढ़े आने न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसी देखे संसार सत्संग निभाए तिना नहीं कमाई दाते अंदर की बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्तां सत गुरुद्वार दाते अंदर की बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाह नाम किता है जित आवर का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा चार तन चरियात देश देश की फतेह बृद की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान कीह दान रैत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जायका बोलो जी। वाहेगुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु गुरु की विवाह पंथ सदाशाह गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब ढोर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़ा गया है उन्होंने खुले दर्शन की रात सेवा संभाल दता अपने खालसा जी ने बख्शो ये ड्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु दार जी दोहे कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे तो आने रास हे गिर महाराज जी आपके चरण कामना दरदास सिंह जी आदि तार जी आप जी ने बख्शिश चार चरना पित्र गुरबाणी सुखमणी साहब संपूर्ण पाठ दतार इस वे संध्या समय जान के आपके चरना सूरदार रह राज साहब के पाठ कितने कृपा करो हो भुला चुका माही बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच कर प्रमाण करो दतार बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सुना की कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध के पुत्र सेवा लाने की कृपालता करो दतार मेहनत कर दिता पातशाह जी तन तन उन्होंने दतार पिता जी आकर चरण का अरदास भी दतार जियो तन तन साहिब हरगुरु सत सचे पातशाह छेवे पातशाह जी गुरगद्दी पुरब दिया खुशियां दतार संसार भर दिया संगत आपके पुत्र निहाल के भर रही है नमस्तक और कृपा जी बख्श करो गुरु हरगुरु सचे पातशाह जी मेहर करके समूह संगत एकता सुभाग प्यार की बख्शिश करके सतनों की दाल बख्शो समूह संगत चानना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शिश करके दतार सदा वास्ते अपने दुसाए मार्ग में अपना वास्ते आप दिता साहब मार्ग में चलने वास्ते समूह संगत उद्धव बख्शो उत्साह बख्शो भावना दाल कृपालता करो जी जीवन वाज बख्शिश करो सचे पातशाह जी मेहनत करे आओ अमृत वेरे तो लैके दर्ज आई हैं साफ संगत आज जी दर्ज प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगत दर्ज तिरफ पेटा बनाने शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु गरीब राज इन्हें खुशियां चाप दी बखियां दर्दा पुत्र ग्राफ साहब देकर दर्ज कर हाजिर ने तथा आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सात संगत की रचना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पित्र नाम जब बख्शिश करो तथा दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश दे रखा बख्शिश करो जी हे गुरु सब सचे पातशाह जी आदि चरण सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो अभी सदा ही इसे तरह अपने चरण सेवा जी भावना मतलब बालता करो गरीब नवाज जी गुरु सब सचे पातशाह जी दूर दराज करने बैठी लाइफ पता की शर्म कर रही है सारी संगत हाजी अपना करो घड़िया लिख लाओ सारा बख्शी संगत बख्शे संगत आदि चरण धनबाद कर रहे हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहत माया ऑनलाइन गुरु घर सेवा संघ दस संगत माया बेटा कर चरना प्रवान करो बख्शा सब जी कमाइया सबर करो कारण तो वादे बख्शो सब संगत शुभकामनावान समा पूरी करो जी धन बख्शो गरीब नवाज जी खालसा पंथ सिख कौम एकता सुभाग प्यार जी बख्शे करते सन दस बख्शो चरण जोड़ो मन जा प्यार करे रार हार मैदान दीवान फतेह बख्शे बालता करो जी गुरु जी नवाज मेहर कराओ सेवा प्रवान करो पुनः चुका बाहि बख्शो वेदर रुकम नामी बख्शे करे बंत अज दे चावन की कथक अमृतावास आगा बख्शो रहने का स्वार के चरण दुराज बनाओ शुद्ध दे पिता सारा जी के पास देता सही प्यारे मेरे जिले में रात नाम देता हुआ नानक नाम करती कला तेरे पाने। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ।

फिरत प्रभाया परया तो शरणाए फिरत प्रभाया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए।

अर्जुन कायां पलट कै मूरत हर गोविंद सवारी चली पीड़ी सोनिया रूप दिखावण वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा

एक ओंकार सत गुर प्रसाद पढ़िया कवन कमत तुम लागे बूढ़ो गए परवार सकल सिंह

कैसे उतरस पारा जी बधो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाई आपस कौ मुनवर कर थापो

काहे बजावो पाई, माया कारण विद्या बेचौ, जन्म अभिरथा जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई। कह कबीर रामे राम छूटो,

सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भौ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दर गह मानी, प्रभ कै सिमरन हुई सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, सी सिमरै जिन्हें आप सिमराय, नानक ता कै लागो पाई, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किच सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाय, अमृत नाम रिद्धमाय समाई।

प्रभु कौ सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरह से वे मोहताजी, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अभिनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन नहीं चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कार भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ अष्टपदी, जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा प्यान दूत जम जलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाव सुख गनेरे, सगल त्रिष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जिह मार गयो जात केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं कूट लकबाही, नाम जपत है पार पराही, अनिक बिघन जय आय सुंगारै, हर का नाम तत्काल उदारै, अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौं मैला मल कबू न तोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै,

निभावै कहां बुझांत बुझै डूरा निस्कहियै तू समझै पूरा कहा बिशन पद गावै गुंग जितन करै तौ भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ करमाने मने प्रतीत काल नया वै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह होया हो जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचेते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कैला गयान सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तुले पाछै पावै एक वस्त कारण विकोट गवावै एक भी न दे दस भी हिरले तो मूड़ा कहू कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व तोग नानक तिन पाया गंध सब अपनी दे रास खाद पीत पर तैन दुलास अपने अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीता भी खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्तु सिया गहरा कह प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हित सर पर होत जान अनित बिर की छाया सो रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रे उते अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन पर उपकारा मिथ्या वास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंद मुखियावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाऊ नानक ताकै बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेक न काहू पीन अवर उपदेश आप न

अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधित तन लावे जिसको सिमरत परमगत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे

प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई ध्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्या कतबर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाट पैरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जस रसन बखान। जे प्रसाद

सदा दिन रात। ये प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने कर्ण नाद, जे प्रसाद पिखे विस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजी बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पावै, जे प्रसाद सुख सहज समावै, सा प्रव त्याग वर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनु बिसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्खता को जाग, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता सुराज।

मिले, साधक संग सदा प्रफुल्ल, साधक संग आवे बस पंचा, सात संग अमृत रस पुंचा, सात संग सब की रेन, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग न कतहुता वै, सात संग स्थित मन पावे, साधक संग माया ते भिन्न, सात संग नानक प्रभ सु प्रसन्न, साध संग दुश्मन संबीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साधक संग न भीखा पैर, साधक संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साधक संग ना ही होता आप, साधक संग तजै सवे आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साधक संग न कब होता वै, साधक संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक संग बसै तान उचै, साधु कै संग महल पहुचै, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु कै संग सू धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय कर सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साधक संग सर्व थान गम, नानक साधक संग सफल जिनम, साधक संग नहीं कछका।

दर्शन पेट दोत निहाल साधक संग कलुकत हरे साधक संग नरक पर हरे साधक संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रित बसै नानक उतरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाऊ साधक संग न मंते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लग्गै परम मीठा साधु कै संग कट कर डिठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जीता सुने तीता बख्याने साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भारपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उच ते उची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नान साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै किस बिन कोए नान के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अले ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौशोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृढ़ समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पाव का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए परगा जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपा सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी कर प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर तारै जो अंतरनाम सर्व में पिक है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानको अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पर त्रय रूप न पिक है नेतर साध की टहल संसंग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद भिख्या पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नान कोट मध्य को ऐसा पर सु वैष्णु सो जी सुपर सुप्रसन्न विष्णु की माया त्यो हुए भिन्न कर्म करत हु वैनि कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्रह चै मन तनयंत्र सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावै नान को वैष्णु परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग
मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सासन पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुदै राम नाम मत मैं सोदै राम नाम सारस पीवै उस पंडित कै बुद्धि जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण सिमृत बूझै मूल सुख मैं जानै स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सासन पावै जन कोए कर कृपा अंतर उतारै पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारै सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगल संगा तुम दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन सो कहावै तैसा हरख तैसा सोग सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताई साई जुगत जो वरताई साई जुगत नानक पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखे तैसा तिन्नाओ आपे करण करावन जोग प्रभाव है सोई फुन होग पसर आप हंत तरंग लखी न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल सलो उस्तुत करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रचि बहुविधनिक प्रकार अष्टपदि कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कवका विचार है कई कोट नर्तन नाम त्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपेगात्म निकोर कई कोट पर दर्व को ही रह कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्धति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरक निपजाए कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सूर्य खेतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सकल समग्री अपने सुतार है नान जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरमेश्वरन थीवे कई कोट जकी नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गा सब ते निर सब ते दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवै मरै कई कोट भोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट कालै थक पाहे कई कोट कीर्तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तै राखी नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संगति लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म है पार ब्रह्म लहंती कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो अब सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हो अवतार कई जूत किन्नु विस्तार कई बार पसरे पासार सदा सदा के कंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते हो ब्रह्मा समाता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोवे कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तम परगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सर सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै तुमरा सुख सह समावै अपने जन को सास सास सुमारी नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारण जल थल महील सोय अष्टपदी
करण करावन करण है जोग जो तिस पावे सोई होग किन में थाप थापन हारा अंत नहीं किछ पार आवारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक समय रिहा समाई प्रभावै मानुक गत पावै प्रभावै तं पात्र त्रावै प्रभावै बिन शास्ति राखै प्रभावै तं हर गुण पाखै प्रभावै तं पतत उधारै आप करै अपन बिचारै तू हंसुरिया काप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कव मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ हुई तो सब कुछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजान विख्या मैं रचै जे जानता पर ना बचै पर मैं भूला दह दिस्तावै निमक माय चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तीजन ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा जिस प्रगटावै जाकु अपनी करे बख्शीस ताका लेखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै दिख बढ़ाई इसका बल ना ही सहास करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी वपरा जियो जो तिस भावै सोई फुंतियो कबहू ऊच नीच में बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद प्यवहार कबहू बकास पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबहू नृत्य करे बहुपात कबहू सोई रह दिन रात कबहू मां क्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू हुए बह बड़ राजा कबहू पेकारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त मह आवै कबहू भला भला कहावै ज्यो प्रभरा कह त्यो ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू हुए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हुए जियान ज्यों भरमै भरमिया नाना रूप ज्यो सुहागी दिखावै ज्यो प्रभावै तिवै निछावै जो तिस भावै सोई हुए नानक दूजा वर न कोए कबहू सा संगत त्यो पावै स्वस्थान ते बहुर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रत्ते करंग सदा बस पार ब्रह्म कह संग ज्यों जल मैं जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कह सत कुरबान श्लोक सुखी बसै मुस्किनी आया पनिवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जन मरै बोजुन प्रमावै धन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बिसावै नानकिया मुक्ता कै सुख पावै धनवंता हुए कर गरवावै तन समान का संग न जावै बोलस कर मान कुपर करयास फल पीतर ताका हुए बिना सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दर गया परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले फिर तारे तपस्या करे अहंकार नग सुर फिर अवतार अनेक जतन करात्म नि द्रव है हर दर गय को कैसे गवै पस को जो भला कहावै तिशहै भलाई निकट आया वै सर्व की रेंजा का मन हुए कहो नानक था कि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख ना ही कोए जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिरता जब तारे कुबैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मुह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहज खट्टे लग उठतावै तृप्त न आवै माया पाछ पावै भोग विख्या के करै ने तृप्तावै कब कमरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोज बिरते सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ किनु स्वप्न रंग सब ते दूर सब कै संग पूजा देखे करे विवेका पह का पै अनेक मरे न बिन सया वै न जाय नानक सद ही रिहा समाये आप उपदेशै समझै आप फिर रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछु सकाउ करन हार
ਉਸਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਇਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤਾਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤ ਸਭ ਕਿਨਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਵਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨ ਅਰਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਹਥੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜੁਨ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੁਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੁਨ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਉ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿਨ ਟਿਕ ਨ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆਰ ਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਵ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤੁਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਿਮਿਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਂ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਿਨਮ ਮੈਂ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਠਾਉ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੱਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜਿਉਂ ਸੱਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਪਣ ਵੀ ਜਾਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਗਵਰਨ ਰੱਖਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਭਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀਓ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉਂ ਜਲ ਵਿਹੋਂ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜਿਉਂ ਪਾਵ ਕਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁੱਟੈ ਕੇਲਾ ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲਕੇ ਤਮਾਹੀ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕਾ ਤੁਰ ਹੀ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਇਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕਿਉ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੁ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਤੀ ਆਪਣਾ ਖੇਲਾਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿੜਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜ ਹੋ ਸੇ ਆਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਹੁ ਜਾਇ ਅਸਤਪਦੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਵ੍ਰਿਤੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋਇ ਕਹਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਏ ਰਹਿ ਅਗਾਇ ਬਹੁਰਾਂ ਤਿਸਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਕੋ ਆਪੂ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾ ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖੋਇ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਕੰਠ ਪੁਰੋਇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ਨਾਨਕ ਬਿਗਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ਉਸਤਦ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ ਨੈਨੋ ਪੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਤਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੈ ਭਾਵ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗੈ ਨਾਨਕ ਜਲ ਮੱਥਾ ਬਿਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜੁਨ ਜਗ ਮਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੈ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਉਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਤੁਤ ਕੀ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਜੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕੈਤ ਸਰਵ ਲੋਕ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ ਅੰਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀ ਅਜਮ ਕੀ ਪਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸਮਨ ਭੂਖ
नानक दिशा न लागे दुख, जिनको हर प्रमंच त्यावे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, शोधत शोधत शोधत सीजिया, गुर प्रसाद सब उजिया, जब देखो तब सब किच मू, नानक सो सुखम सोई सू, न किच जन्मे न किच मरे, आपन चलता आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्टि, आपे आप सगल मैं आप, अनेक युग त्रस्ताप ताप, अविनाशी ना ही किच खांडो तारन तारे हो, ब्रह्मांडल खपे पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का शब्द जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बिटपागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन प्रभु उत्तम करमान, जो किच करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुए सो हुए, करने हार पुछाने सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस्माय समाये, ओ सुख निदान उन्हों बने आए, आपस को आप दिन मान, नानक प्रभ जने को जान, श्लोक सर्व कला भरपूर, प्रभ बिरथा जन नहार, जाके सिमरन उदरी, नानक तिस बलिहार पदी, टूटी गाढ़ नहार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिस तो प्राणी लोचै कोए, तिस बिना ही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत हुए ना ही मोह है, प्रभ की जो सगल कट सो है, धनवंता हुए क्या को गर्व है, जै सब कि तिसका दिया धर्व है, सूरा जे को कहा वह, प्रभ की कला बिना कहता वह, जे को हुए बह दातार, तिस दिन हार जाने गावार, जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग, जो मंदिर को थम है थमन, त्यो गुरु का शब्द मन है स्तमन, जो पाखान आप चढ़त रह, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है, जो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन हुए विगास, जो महा ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, त्यों संतन की बाचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर काहे बिललाई है, पूर्व लिखे का लिखिया पाई है, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसै चितार, जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरया जान, कौन बसताई तेरे संग, लपट रहे रस लोभी बतांग, राम नाम जब फिर दे माही, नानक पद से टी कर जाहि, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताजब मान ले हो मन भूल, राम नाम हृदय में तोल, लाद के संत संचाल, अवर त्या विख्या जंजाल, तन तन कह सब कोय, मुकु जल हर दर गह सोए, हुआ पार विरला व्यापार है, नानक का कह सद बलिहार है, चरण साध के तुहित पी, वर प्रसाद को अपना जियो, साध की धूर करो इस नान, साध ऊपर जाइये कुर्बान, साध सेवा बट भागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये, निक विघन ते साधु रखै, हर गुण गाय अमृत रचख है, उठ गई संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवता धार, सर्व निदान जा की दृष्टि माही, पूर्व लिखे का लहना पाई, सब कि तिसका करने जोग, तिस बिंदु सर हुआ न हो, जप जान सदा सदा दिन रहनी, सब ते उच निर्मले करनी, हर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सूजन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जने आवे हर प्रवचीत, भगत पग सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय को हुए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत, साची दृढ़ सचाया कार, सच वर्त्या सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सूजन सच

सुहु वैसु प्रसन्न अष्टपदि अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मानु की तु प्रीत्याग तिष्ठे पर नाहि किछु कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक मन हो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन पर जाकर नित्र फूल तिसका मंत्र न जाने हो रण द्रु मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राज युग में जोगी तप में तपिस्तर गृष्ट में भोगी त्याय त्य भगत सुख पाया नान तिस पुरु का किन्त न पाया जाकि लीला की मित नाहे सगल देव हारे वगाहे पिता का जन्म की जाने पूत सगल पुरु अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जिनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाय जन्म रह फिरिया वह जाय ऊंच नीच के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पी करे करंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ बना सी कंकार नाना चलत करे किन माए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिलकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान कर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उतरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाकर सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरुष सब महेश मानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नान गुरु ते पाई सत वचन साध उपदेश सत जन जा कर दे प्रवेश सत निर्दूजा जे को इनाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सु करने हर अवर न भूज करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सुवरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे हो जाते दुखट नहार जा कर संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कर संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपो हुए बसाना जिस ते उपजिया तिस माए समाना बस्त माए ले बस्त गडाई ताको पिन्ना कहना जाए बूझे बूझनार बवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर काओ सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस तया प्रवतार है नाम सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक किया पत्र रख है ताकि कथ में तो कोई न लख।

0: कोट करोड़। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, नदी ते एको ही है, पानी ते एको ही है, पर पानी दिया लहरा करोड़ा उठ दिया है। पानी एको ही है पर लहर जद उठ दिए ते असी कह देने हैं नदी विच पानी दी लहर उठी, कह देने हैं लहर उठ दिया पई।
1: कहो नानके जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे।

चरण कमल रिद मह पुरतारहु, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हरवथ, इहु तन संचहु वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एकास राखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाहि। जिस तन कौ चार कुंठ उठता वह, सो तन हर सेवाति पावह, जिस सुख कौ नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करह भली करनी, सासु भा भज हर की सरनी, अनिको भावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जब नानक धर गए परवान, मन प्रबुद्ध हर कहनाए, दाद स्थावत आवै ठाए।

0: हर नाऊ, सिमर सिमर सदा सुख पाऊ, भव बिनसै पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म प्रगास, तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जिन साचा, जन्म मरे सो काचू काचा, आवागवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक पावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करहो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, सांगना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावह मूर्ख मना, सुतमीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ सवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बेगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मातू लेहे याने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करहो मन बीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाई नानु गुन गाओ, गुन गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हों मैं बिखफैल।
1: पर ए गबरू नौजवान अपनी घरवाली दी कोल बैठा,

अष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब वैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम अपन खेल आवरती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किसको गनी जब एक हर अगम पारु तब नरक सुर कौ कौन अवतारु जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाई जब आपह आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चलताप करने हारु नानक ठाकुर अगम अपारु अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रभिका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप आपिय चर जाओ नानक अपन रूप आपिय पर जाओ जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह चल छिद्र लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे करण करावन करने हारु नानक करते का नहीं सुमारु जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपै परवीन तै वेद कतेव कहा कूचीन जब अपने आपा पुर धारे तो सगन अपसगन कहा विचारे जे अपन ऊच अपन अपनी राह तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जय अचल अचेत भेद समाया ऊहा किसह व्यापत माया आप उसको आपह आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कह एक भगवंता तै कौन अचिंत पिछला कै चिंता जय अपना बाप त्यारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपह पहुंचा जे आप रचियो प्रपंच कारु त्यो गुण मैं किन्नु विस्तार पाप पुन तै भई कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मुह परम पै पारु दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देख खेल संकुच है तो नानक कह जय विगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुह पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपै कौत करै आनंद चूज आपै रस भोग निरजोग जिस भावै तिस अपना लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेशुमार था गंत अतुलै ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बुलै सलूक।

कह दृष्टारु अष्टपदी आप कथ है आप सुन नहारु अप है एका विस्तारु जात भाव है सृष्ट उपाई अपने पाने ले सुमाई तुम ते भिन्न नहीं किच हुए अपन सूत सब जगत पुरोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दा सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयालु सब ऊपर होवत कृपालु अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाले जीअन बहुपात जो जो रचियो सो तिसहत्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक के जानिया जन लागा हर जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक के जानिया जन लागा हर एक कह नाए इसकी आसन

पैर। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभया पह मेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावहु परमानंद, राम नाम तत करहु विचार, दुर्लभ देह का करो उदार, अमृत वचन हर के गुण गाऊ, प्राण तरण का यह सुआऊ, आठ पहर प्रपिखु नीरा, मिटे ज्ञान बिनसे अंधेरा, सुनुपदेश हृदय बसाऊ, मन इच्छे

अष्टपदी संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल सामग्री किस कट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नव नितमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाधन हत्यनाथ कह न जय चर विस्माद तिन देखिया जिसाप दिखाई नानक तिस जन सोची पाई सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पयाल बंत सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दिशे समाहे तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत में देख सस्य सूर नखित्र में एक वाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाइय गुण अमूल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार जो स्वामी योत पोत गुरु प्रसाद परम का नासु नानक तिन में इहो विसास संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख मान जो जो हुए सोई सुख मान करण करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार कला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर का जिस आप जनाए नानक ते जनिया बुझाए सरभूता वरतारा सर्व नैना पिकनहारा सगल समग्री जाका तना अपन जस आप ही सुनाया वन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप

नाम तुल बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखानी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सत्संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए।

का दुख निवार है, दुर्लभ देह तत्काल उधार है। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन महे सुमानी, दुख रोग बिन से पह परम, साध नाम निर्मलता के कर्म।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहाले अवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक ना चलै नाल किव सुचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईऐ इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाईऐ है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जपै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै टूट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया भाउ अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जेति सुभावा विण भाणे के नाए करी जेति सिरठ उपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है ईसर बर्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है शास्त्र सिमरत वेद
नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठसठ का इसनान सुनै पढ़ पढ़ पावै मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गाह सुनै सेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावै राह सुनै हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पछुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सूरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोहे चोटा ना खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै मार्ग ठाक न पाए मन्नै पथ स्यों परगट जाए मन्नै मग न चले पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवार साधार मन्नै तरै तारी गुर सिख मन्नै नानक पवह ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचा सोहै दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहे करे विचार करते कह करणे नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर किता पार धरती होर पर होर होर तिस ते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया वुड़ी कलाम ए हो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया किता होए किता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाखो खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव पुर माए तेव तेव पाहे
जेता कीता तेता नाउ विण ना वै नाही को थाउ कुदरत कवण कहा विचार वारिया ना जावा एक वार ज्यो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तान देह पाणी धोतै उतर सोखे मूत पली ती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरिए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर करना लिख लै जा।

जे को पावे तिल का मान, सुनया मनया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति माह कवन, जित हुआ आकार। वेल ना पाया पंडती जे हुवे लेख पुराण, वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण। थित वार ना जोगी जाने, रुत माहो ना कोई, जाकरता सिर ठिकाओ साजे आपे जाने सोई। केव कर आखां केव सा लाही, क्यों वरणी किव जाना, नानक आखण सब को आखै, एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाता होवै नानक जे को आपौ जाणै। अगै गया न सोहै पातालां पाताल, लख आगासां आगास, ओड़क ओड़क भाल, थके वेद कहन एक वात। सहस अठारह कहन कतेबा, असुलु एक तात। लिखा होए ता लिखी है, लिखा होए विनाश, नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। सलाही सलाहे इति सुरत न पाईया, नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिया है। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हो न विसरै। अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत, अंत न वेखण सुनण न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे। ए हो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ। ए वड ऊंचा हो वै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगा है जोद अपार, केते आगणत नहीं विचार। केते खाप तुट है वेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूरख खाही खाहे। केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी पाणै होए, होर आख ना सकै कोए। जे को खाए को आखण पाए, ओह जाने जेतिया मोहे खाए। आपे जाने आपे दे, आख है से पे के जिसनु बख्से सिफत सलाह। नानक पात साही पात साह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल पंडार। अमुल आवे है अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबाण, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बखसीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वख्याण। आख है भरमे आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर आख है सिद, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे ता आख न सक है केई के। जे वड पावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आख बोल बिगाड़, ता लिखी है सिर गावार गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे।
केते राग परी स्यों कहियन केते गावन हारे गावै तुहनो पौण पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारी गावह इंद इंदा सुन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पायाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खांड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारे से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम ना करना जाई सो पात साहो साह पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावै है लिखे आवै भाग आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ऊना नदर न आवै बहुता इहो विडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस एतराहे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश
ਕਿਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕਿਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਟਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ

आलम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जा को भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीने उत पूज खान बहुर राज दीने कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जी अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ द लेहो उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सोब राता किल बेख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता श्री असतो जब पये दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सतरै सहस पणि जय अर्ध सहस फुन तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कहे हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहे सब तुहे बखाने।

तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जागदी ज्योत बाणी के बोहित नाम के जहाज चावर ताकत शत्र वे मालक सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया के पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गुरुद्वारां दी सेवा हित कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी सिद्धक केसां सुआसां संग निभाया तिन्हां सिंघां सिंघणियां भुजंगी बच्चियां दी नाम दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चेते आवै जी। नाम चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रहा है। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे पवित्र दर्शनी इशनान। चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणिया दे मान सतगुरु ने ताणिया दे ताण सतगुरु ने ओटिया दी ओट ने आसरिया दे आसरा सच्चे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जिया का कोटान कोट शुक्र है पातशाह जी अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदार बख्श रहे हो महाराज जी। आप जिया दे महाराज तख्तों दी टहल सेवा करदे हुई बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी सतगुरु जी अगे तो सुमत बख्शिश करो। आप जिया दे पावन स्थान सिख गुरुद्वारा सैन हो जी विखे महाराज जी अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सजे हुए सुने दीवाना दे विच महाराज जी संपूर्ण श्री सुखमणी साहिब जी दे जाप होए उपरंत नितनेम दीआं पंजां बाणीआं दे पाठ होए। सतगुरु जी बाणी पढ़द्या सुनद्या हाजरी भरद्या सेवा करद्या होईआं बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान कर लैणी बाणी दा भाव समुची संगत दे सिरद्या ते वसाउणा महाराज जी। बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करो महाराज जी। काम क्रोध लोह मोहंकार तो बचाउणा सिखी सिदक केसां सुआसां संग निभाउणा पातशाह जी। दाराइयां होईआं संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां सब दी हाजरी लेखे लाओ दरों करो सिखी सिदक भरोसा नाम दीआं दातां बख्शिश करो। तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां परिवारां दे विच नाम दा प्रगास करना दुखां दा नाश करना चढ़दी कला हर मैदान फतेह बख्शिश करनी सतगुरु जी।
ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਆਇਆ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਰਬੱਤਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਚੂਰ ਕਰਨੇ, ਰਸਤਾ ਦਰਗਾਹੋਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी वडहंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम।

सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिन कौ हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम मेरा सतगुर प्यारा

शिवाय मेरा अंत सखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया।

0: सत्संग जी
1: बोलो जी।
0: वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहि पाचे दस प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास वसाए। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करन उन द्यावै ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय, दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार त्यंतर के हर सस। बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हड्डियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वाड़ चक्या दे चलाई ते वाहि दे के निड़ कीता तेना प्यारे सत्यारा की कमाई दे अंदर की। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म ए सी दिते बंद बंद कटवाए, खोपरियां लवाइया चरखड़ियां ते चढ़े आ रहे नच रहे गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके सत्सा सिंह निभाया तिना की कमाई दे अंदर की। बोलो जी वाहेगुरु। पंजाबत गुरुद्वारा ध्यान दरगे। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चेता वै चित आवण का सद का सर्व सुख हो, जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देखते की फतेह बृद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत विच मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की बनवाज कहते सदा सहाय दताज दे गुरुद्वारा ने निकाला साहब पंजा साहब के होर गुरुद्वारे गुरुताम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार से सेवा संभाल दता अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे तो आने रास। हे गरीब नवाज जी आप जी के चरण कामना अरदास ने उतार दी आपने बख्शिश की है आप के चरण गरीब नवाज पुत्र गुरबाणी उतार दियो आशा की वाले सबूर कीर्तन हो अवरंत आदि विद्वान बिना जो को नाम लिखे था विचार की कृपा करो वो यहां भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच के अंतर गुरबाणी का भाव सारिया संगत हृदय सारी कृपालता करो जी। अगो तो शोते पुत्र बाणी टाण की बरबदी बख्शिश करो इन आज इस खुशी आप दी बख्शिया दाता पुत्र कलाम शादी दे गया तैयार कर हजार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सात संगत की रचना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी तांतर दतार पिता जी हो आप दिया बख्शिया दाता ने लगने तुट सारे प्रमाणिका ने गीबन आज आपके चरणा सेवा कर रहे सारे प्यारिया सिंह सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चढ़ करा बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना में कृपालता करो गरीब नवाज अमृत वे तो लैके दरते आई हैं साफ सतहाल जी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दर देते फुल पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज कृपा करो दतार जी हो खाल संबंध से कौम एकता स्वागत प्यार जी बख्शी करके सत दाल बख्शो चाना ना जुड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो रार हार मैदान जवान ने फतेह बख्शो बैलता करो जी गुरु गरीब नवाज दूर दराज बैठी लाइव कथा की श्रवण कर सारी संध्याल जी प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ तारा आपने बख्शिश की है संगत ने उधर बख्शे संगत आपके चरणा धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु घर सेवा का संकल्प संगत माया भेटा कर रही चरणा प्रवान करो बख्शी साहब की कमाइया सबल करो खर्च वादा सब संगत शुभकामना सब पूरी करो जी मेहनत करो गरीब नवाज सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो बेहतर गुनामी बख्शिश करके उपरंत लड़ीवार सैठ पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो रेंदे कार सवार के चैनल तुरंत मददार शुद्ध ने पुत्र सेवा लाने की बात करो जी सही प्यारे मेरे जिन्हें बनाव का नाम जता नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी।

किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिक

हम हर स्यो तड़ा किया, मेरी हर टेक मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई। हाँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यों तड़े कर है से जाहे, झूठ तरे कर पछोताहे, थिर न रह मन खोट कमाहे। हम हर

सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत तत कढ़िए। आसा महला चौथा। नाम सुनी नाम मन पावै, वड्डे भाग गुरमुख हर पावै। नाम जपहु गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई। नाम रव्या सब

हर सिंचो गुरमत जीत। जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी, जो देहो मति तित चेल। जन नानक के प्रभ अंतर जामी, हर लाभ मनुआ पेल। आसा महला चौथा, कब को पालै।

तब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन कौ पते आवे, लोक पति न ना पत हुए, जन नानक हर हृदय।

लिया घट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए, हर जन नाच हो हर हर त्याए, ऐसे संत मिल है मेरे भाई, हम जन के तू वह पाए रहा, हर हर नाम जपो मन मेरे, अन दिन हर लिव लाए, जो इच्छो सोई फल पाव हो, फिर भूख न लग आए, आपे हर परपंच आपे हर अपरंपर करता, हर आपे भूल बुलाए, सही संत भले तुद भाव है, जिनकी पत पाव है ताए, नानक आख न राजै हर गुण, ज्यों आखै त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वणज लै जाए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर अठवें के काफी, महला चौथा, आया मरण तुराहू हौ मैं रोइए, गुरमुख ना

रहाउ। पूर्व लिखे देह से आए माया, चलन अज के कल तुरहों फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिन नाम विसारिया, जुवै खेलन जग के इहु मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच सुमाया। आसा महला चौथा, जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया, गुर प्रसादी बुझ सच सुमाया। जिन तुर लिखिया लेख तिने नाम कमाया, दर सच्चे सच्यार।

पंजवा निज भगति शीलवंती नार रूप अनूप पूरी आचार जित गृह वसै सुगृह सुभावंत गुरमुख पाई किन विर लैजंत जित गृह वसै सुगृह सुभावंता गुरमुख पाई किन विर लैजंता सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परथाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ तिचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरख मनाया गुर आणी घर मह ता सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सच संतत पूत आज्ञाकारी सुगड़ स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार है माही श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ धन सुग्रहो जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाय आसा महला पंजवा मता करूं सो पकन न दे सील संजम कै निकट खलोई वेश करे बहु रूप दिखावै कृह बसन न दे वक वक परमावै घर की नायक घर वास न देवै जतन करूं पुरजाए परे वै रहाव तुरकी भेजी आई अमर नौ खंड जीते सब थान थनंतर तट तीर्थ न छोड़े जोग सन्यास पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास जह वैसो तह नाले बैसै सगल भवन में सबल प्रवेशै होची शरण पया रह न पाई कहो मीता हों का कहो मीता हों कह पै जाई सुन उपदेश सतगुर पहाया गुर हर हर नाम मोहि मंत्र दृढ़ाया निज घर वसिया।

को आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रत्ने हो मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए, वखर काढ़ो सौदा कराए रहा, साहे पठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विष्ट सुपाई पाया मीत, सौदा मिलिया नहीं चल चीत, पाओ नहीं तस्कर पाओ ना पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, सत कह खटिया दुख नहीं पाया, सही सलामत घर ले आया, मिलिया

तेरी पनिहारी, इस धरती मैं तेरी सिकदारी, सोइना रूपा तुझ पहताम, सील बिगाड़ियो तेरा काम, जाको दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते लई छिड़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक।

जीवत दिसे तिसर पर मरना, मुआ हुवे तिसने चल रहना। जीवत मुए मुए से जीवे, हर हर नाम अवखत मुख पाया। गुर शब्दी रस अमृत पीवे, रहाव काची मटके बिन्स बिनासा। जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज करवासा। ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, धरन पड़े तिस लगे न काला। भ्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुरु गुर शब्द कमाया। से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब

बेनती कर दें आप जी दे चलना है। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देखते धनी हन सरबंस दानी हन खालसा पंथ के सृजनहार हन उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवें जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिगल हन 31 राग ही मिश्रित हन 62 राग एडा वड्डा खजाना उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने 177 सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू हुई सी और इन्हों 2 साल लगे सन लुधियाने विच दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी बहुत वड्डी देन है सात संगत जे असी उस देन नु संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान इत्थे आउणा सफल हो जाए जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाया उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ए उही क्रांति ते सी सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद।

0: पावे।
1: राम नाम माता में सोते
0: राम नाम सार पीवे उस पंडित को देव जग जीवे प्राण सिमर दूजे मूल सुखम है जाने
1: को
0: ज्ञान छो वर्णा में जपे को
1: नामा
0: अंतर उतारे फसते मुहूर्त पाथर को उतारे
1: कल्याण
0: न पाइए धर्म नानक कृष्ण जय जो दिज्ञा दूर करम
1: राम
0: तिर न दे आया दास तुमसे पाए तिर पाया अपने दास को आप फिर पास है फिर दास को सब सो जी करे आज्ञा आकर मितावे जीवन पर सो पावे
1: सदा
0: देती उस माटी देखा मृत देती दिखा की